0: समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान, थप जानकारी को लागि
0: फिर समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड।
1: प्रबंध निर्देशक नंदराम परियार, फोन नंबर 98146।

0: अभिथिन जेस
1: नव प्रतिभा का लागि विशिष्ट स्थान थप जानकारी को लागि
0: फिर समझौता डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
1: प्रबंध निर्देशक नन्दराम परियार फोन नंबर 98146 96 46 26